0: छुटै संसार।
1: जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोए।
0: राती रुती थिती बार, पवन पानी अग्नि पाताल।
1: जिस वे धरती थाप रखी धर्म साल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत।
0: करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार।
1: जिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवे निशान।
0: कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए।
1: धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म।
0: केते पवन पानी वे संतर, केते कान महेश।
1: केते बर में घाड़त घड़िए, रूप रंग वेस।
0: केतिया करम भूमि मेर, केते केते तू उपदेश।
1: केते एंद चंद सूर, केते केते मंडल देश।
0: केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश।
1: केते देव दानव मुन, केते केते रतन सुमंद।
0: केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरेंद।
1: केतिया सुरती सेव, केते नानक अंत न अंत।
0: ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नान विनोद कोट आनंद।
1: धर्म खंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप।
0: तागिया गला कथिया न जाहे, जे को कहे पिछे पछताए।
1: तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़े सुरा सिद्धा की सुध।

0: सदा सचिदानंद सर्वंग प्रणासी अनुपे रूपे समस्तल निवास से ही परम परम परमेश्वर गोष्पाल सदा सदा सिदा तदयाल जले है तले है बीत है बे है अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूप नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवंग काले नमस्तवंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्वे से
1: नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाये
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोके नमो शोक शोके
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग
0: नमो सर्व ज्ञान नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र
1: नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे तरपंगी अनंगे
0: नमो जीव जीव नमो बीज बीजे अख जय अभिजय समस्तंग प्रसजे
1: कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग पन्नासी सदा सर्वदा रिद्ध सदंग निवासी चरपण शांतवे प्रसाद
0: अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे
1: अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग
0: सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने
1: सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुक्ता
0: सर्वंग देवंग सर्वंग पीवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले आद रूप नाद मूर्त जौन पुरुष अपार सर्व पालक सर्व कालक सर्व गोपन काल
1: अब्दु

0: सर्वं ज्ञाता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणिक
1: सर्वं त्राणिक
0: सर्वं कर्म सर्वं धर्म सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता नमो नरकनाशेदेव प्रकाशेन अंगं स्वरूपे अवंगं विभूते
1: परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते
0: अनंगीना मित्र भंगी दृगा मंद्र भंगी।

0: परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व वारण है।
1: केतन है, जग के करना मन माने है, जग जाने है,
0: सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वपास्य है, सर्वनाश्य है,
1: करुणा कर है, बेसंबर है, सुरबेश्वर है, जगतेश्वर है,
0: ब्रह्मंडस है, कल खंडस है, परते पर है, करुणा कर है,
1: अजप अजप है, थपा थपा, कृता कृता, अमृत अमृत है,
0: अमृता अमृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, तड़ी कृत है,
1: अमतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृता, अमृत अमृत
0: है, अजपा कृत है, अमृता अमृत है, नायक है, खलकायक है,
1: बेसंबर है, करुणालय है, नृपनायक है, सृपायक है,
0: पंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है,
1: अकलंक करता है, सर्वा करता है, कर्ता कार है, अर्ता हर है,
0: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुचंग पयात चंद्र,
1: नमो सूर सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो

0: नमस्तुल प्रणाम में सुमस्तुल प्रणा से गंजला नाम में सुमस्तुल निवास से
1: कामंग बैपुते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग बैपुते
0: सदा सच दानदान सतरंग प्रणासी करी मिल करें दास मस्तुल निवासी
1: अजाय बैपुते गजाय बगनी में हरियं करियं करी मरही।

0: भगवान कृपा बिन त्याग जहान निधान चलेंगे।
1: वीर पार बड़े बड़े आर बिचारे सर की धार पछैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बात नहीं जग चार लवैया दानव देव निंदन सचर भूत बिख भवान जपेंगे
0: पुन
1: प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन के बुंज खपेंगे मानव इंद्र जिंदन रात जौन त्रिलोक राज करेंगे ब्रह्मेश्वर विष्णु सची पतंत फसे जम फास परेंगे
0: हाँ
1: प्यो जो दो लोचन मुद कह बैठ रहे भगत ध्यान लगायो
0: समुद्रन लोक के ऊपर लोक
1: गवायो बस की बैठ के ऐसे ऐसे सुबह सब बतायो
0: सुन ले हो सब जिन प्रेम की ओत नहीं प्रभु पाहु
1: पहन पूछ तरह सरकाहु लिंगर।

0: मोर रक्षा निज कर दया करी सब बैरन को आज सिंह रहे तो मैं शाद कोई और न त्याऊ जो बरचाऊ सो तुम ते पाऊ
1: हमारे
0: मुझे बरिया मरण काल का त्रास नरे
1: सदा हमारे पच्छा सो जो करे हो रक्षा
0: राख लियो मुझे रखनारे साहिब संत सहाय प्यारे
1: बंद दुष्ट के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता
0: काल पाए ब्रह्मा भक्तरा काल पाए शिव जी अवतरा
1: प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा
0: जमन काल जोगी सब की

संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी जबद कर करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बुझ उचारे निरंकार निर्विकार निलंबो आद नील नाद संभ ताको कृपाने अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत आप अपनी बुद्धि जति वर्णत भिन्न भिन्न तो

0: फूल राजा वह बैठा कौन सिमट प्यो संकरी कैठा अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बारा सिख संगरो शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो है मरे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निटने आए
1: हैं
0: कृपा दृष्ट संजाय न हर हो ताके ताप तनक मोहर हो एक बार जिन तुम्हें सवारा काल

लोभ मोह अहंकार कहो नानक आपन तरै औरन लेत उधार ज्यो सुपना यार पेखना ऐसे जग कौ जान इन मैं कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान निस

बंगली पौना सलेकी की पई बारी पैरों की पंचो नारी पंच महारक दिशाख सुनावै बंगाल मद माधव गावै ललित बिलावल गाव ही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव की गावै गायन पात्र द्वितीया माल कौंसकिया लापै संग रागनी पंचो थापै गूण करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुति उचारी तनासरी पंचो गाई माल रा कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में बारा प्रबल चंड कौशक्यो बारा खौकट पौर आनंद गाई अष्ट माल कौशक संग लाई पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत उठ तान कलोल गायन तार मिलाव ही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पार जा संग लाई पंच वार जा सुरमानंद पास कर आई चंद्र में मंगलन सुहाई सरस बानो वाहि बिनुदा गावें सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीप की बारी कशेली।

पाछय सिंधविया लापी श्री रागस्यो पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग की गोंड कौंब हमीर खष्टम ईग राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै सूरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुनगुनी उच्चे सुर सुहो पुन कीनी मीघ राग सो पांचो चीनी बैरा तारू गज तर की दारा जबली तर नटे औ जल तार पुन गावें शंकर औ श्यामा मीघ राग पुत्रन की नामा

सूता माता की आशीष निम्ख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश सुख डालगुर सेवी एहन सहज सुभाए।

0: सगळ्या पोलिक्या सुरळेख नानक निरपोनरंकार सचिव महल्ला पहला
1: नानक निरपोनरंकार उर के तेरा मरवाल कितिया कन कहानियां किते बेद विचार किते नचे मंगते गिणमिण पूरे तार बजारी बजार मैं एकड़े बजार गावे राजे राणियां बोले आल पताल लकटक्या के मुंदड़े लकटक्या के हार जितन पाई है नानका सेतन हो वैशार ज्ञान गली ढूंढिया

0: सरा मेरा जनता। नानक जन तो पाए का समाले सबना जिन करते करना की अजंता पे करणीता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जुआरी स्वास्थ्य तिस तिस दीबान पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला।
1: लख निकिया चंगियां लख पुना प्रवान लख तप प्रतीथा सहजोग बेबान लख सुरत संघरारण मैं छुट्टे प्राण लख सुरती लग ज्ञान त्यान पढ़िया पाठ पुराण

पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ परिया सात, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड़िया खात, पड़िया जेते वर्ष वर्ष, पड़िया जेते मास, पड़िया जेते यार जा।

सच्चे अमृत परे अमृत पिय रस गुण गाए गहि गुरु के जो रंकाए जिनु कृपा करे जाए संसार संसार तरण विहाय के अपने पाने कर लेनो आपे लेन लाल मिलाया पे आप मन वसिया माया मो चुकाए आप डाई जीती ने गुरु के देव जाए सबना कदा ताए कै भुले ले समझाए के आपे आप खोवाए ने दूजे पाए दूजे टन लाए गुण ती हर पाए जिनु गुरु ज्योति ज्योत मिलाए अणदिन नामे रत्या नानक नाम सुमार सिरा कमला तीजा गुणवंती जस पा त्रिशंता जी कार है गुर शब्दी मन रंगे आ रसना प्रेम प्यार है बिन सब गुरु ने पायो कर वेखो मन विचार मन मुख मैल ना उतरे जिचर गुर शब्द न करे प्यार है मन मेरे सब गुरु के पाने चल देने जो कर वसै अमृत फेता सुख है महल है रहा अगुणवंती गुण कुम नही वह न मिले है दूर मानुक शब्द न जाने अगुण सुर दूर है जिन्हें सब जाने सतरे प्रभु रे गुर शब्द मन वेदया प्रमिलया बहादुर आपे रंग रंगे ने शब्द लेन मिलाए सच्चा रंग न उतरे जो सतर दे मिलाए चारे कुंडा पाप तक मन गुज न पाए जिन्हें सतगुर मिले सो मिले सच्चे शब्द सुमाए त्रे मित्र कुणरी करते कि मैं दुख काटे कोई मृत्यु दुख कटे आ शब्द मिलावा होए सच कटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए सच मिले सिन विछड़े नानक गुरमुख सोए श्री राग महला तीजा पे कारण करता करे सृष्टि आओ जे क्या उपाय सब को एक वरत अलख न कह जाए आपे प्रभु दयाल है आपे देहु जाए गुरमति सदमन से आ सच रह मिलाए मन मेरे गुरु की मन निर जाए मन तन सीतर सब थी है नाम सिमण रहाओ जिन करुण कर जिन कर कारण तारे सोई सार करे गुर कै शब्द पछाणे जापे नदर करे मछे जन शब्द सो नीति सच्चे दरबार गुरमुख सच्चे शबरत अमले करदार गुणमति ससला न जिस अंतना बार बार हे कड़कड़े आपे हुकुम वरत हुकुम से हुकुमे करे विचार गुर पर गुर शब्द सलाये हमें जो खोए सत नावे न बाहरी अवगुण तीरोए हुकुम सच सलाय सच का सच नाम सच हो गुण चारी गुण सब गुण गुणा तो आपे मेल मिला छोड़ा ना हो नान गुण सलाई अपना जिदू पाई प्रभ सोए श्री राग महला तीजा सुन मन काम घेलिए के चले बाल उड़ाए अपना पिन पछाणी क्या मुदे सी जाए दिस जिनी सखी कंध पछाणे उतन के लागो पाए तिन की जय तिन ही जय सी तीरा सत्संग मेल मिलाए मुंदे गुण कूड़े उठी कुड़ियारे फिर खै पर सचा सोह न पाई गुरु विचार हाओ मन गुण अब मन मुख कंध न जाने कर क्यों रहन विहाए गुरुटिया तिस ना जलै दुख पावे दूजे भाए शुरु तिया सुहाग नहीं तिन विचो हो में जाए सदा भी रावे अपना तिन सुखे सुख जाए ज्ञान हुनी फिर मुतिया किरण पाए जाए अज्ञान मति अंधेर है बिन फिर देखे भुख न जाए वो मिलो से लियो मैं फिर में दे मिलाए मैं प्रभ दे मिलाए पूरे बाप सतगुर मिले फिर पाए सत समाए सही सुहाग जिन को नदर करे कर्म पहचाने अपना अपना तन मन अगे दे घर भर पाया अपना हो मैं दूर करे नाम सोभावंती सुहागणी अण दिन भगत करे श्री राग महला तीजा एक बुरावे अपना हों कह दर पुछो जाए सतगुर से भी भाव करे मैं फिर दे मिलाए सब उपाय आपे वेखे किस नेड़े किस दूर है जिन प्रसंग जाने फिर आवे सदा हदूर है मुंदे तू चल गुर के भाई अण दिन रावे फिर अपना सच सत समारा सतियाँ सुहागणी सच्चे सब सुहारे हर बार पैण करे अपना गुर कैद पिया पारे से सा सदा हरंग रावे भगत परे भंडार सुख प्राप्त प्रीत मन वसै दे

अटके मुठा जाय बाबा माया परम फुलाय परम फुली डोहा प्रियं समाय रहाव पुली फिर संतरी पुली ग्रह जाए पुली डूंगर थाल चढ़े परमी मंडोलाय तुर बचोनी क्यों मिले।

सतगुरु सेवा सहज रूप जय होमें तृष्णा मार हर गुण दाता सुमन बसी सच रुखिया उधार विपरा मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम धन हरमन बसी हो में दुख सब जाए सतगुरु सब सुनाया हो सत भला हरे जाओ अपने मन चित कह कहे बिन गुरी आप न जाई।

काया रोग नशद्र केश केश ना काढ़ा शोग मित नावी चेत ते स्वयं भोग प्रभु साहु की तुम अपना जी नशांक तरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जाम कां कर बस परिया कृपा करिए जिस पार ब्रह्म हो साधु संग ज्यों ज्यों बधाई त्यों त्यों हर स्वयं रंग धुआं श्रिया का काश मा भवन दू जाता साधु उठाए पाया नानक सच्चा नाम श्री राग मरला पहला श्री राग महला पंजवा कर पंजवा चाणो नाई भावे गुण वाता मन भोज मार ग्राव ज्ञानी ध्यान कर लावे ज्ञानी ज्ञान कमावे ब्रह्म के लिए जाता बहुत ही रह जोता जोगी कह तो मुक्ता तब श्री तबिराता मोनि मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भक्त नए प्रकारा पंडित में प्रकार गृहती गृह धर्मता एक शावदी व रूप ब्रूता का पड़ी कौर ते जगु तैग तीर्थ नाता निरहार वती वर्षा एक लोग न देवी दर्शा एक मन ही गया था काट न के नहीं कहाया सब कहते हैं पाया जिसे मेले सुपगता जग लोग तो पावा त्यागी जन भवन नानक चरण प्राता एक ओ अंकार सद प्रसाद श्री राग मल्ला।

एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला पैरे कर पहला पहली पैरी रहण के बनजारिया मित्रा हुक्म पै घर वास होता पांतर करे बनजारिया मित्रा खसम से तीरदास खसम से तीरदास खाने उद ध्यान लेव लागा नाम ज्यादा कर पितर बहुत जासी नागा जैसी कलम बुढ़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास गोरन प्राणी पहले पैरे हुक्म पया गुरवास दूजे पैरे रहण के बनजारिया मित्रा अबसर गया ध्यान हथो हथन चाहिए बनजारिया मित्रा ज्यों जसदा घर कान हथो हथन चाहिए प्राणी मात कै सुत मेरा चेत चेत मुण मर मेरे अंत नहीं कश तेरा जन राज रचिया तिस न जाने मन भीतर तर ज्ञान को नानक प्राणी दूजे पैरे बिसर गया ध्यान तीजे पैरे रहण के बनजारिया मित्रा धन जो बन सोचे तर का नाम नचेती बनजारिया मित्रा बद्धा छुटे जित हर का नाम नचेते प्राणी विकल पया संगवाया धन सुरता जो बनमत्ता हला जान मंगवाया धर्म से ती व्यापार न की तो कर्म न की तो मित को नानक तीजे पैरे प्राणी धन जो बन सोचेत चौथे पैरे रहण कै बनजारिया मित्रा लावी आया खेत जा जम पकड़ चलाया बनजारिया मित्रा कृष्ण मिलिया भेद भेद खेत हर कृष्ण मिलियो जा जम पकड़ चलाया

सरस्वती गुणते जन्म नशा मिट गई सखी में लोगाया अश्मिया वो नमाया होया कर गली ने नान गुरा प्यारे सुन साहब सा गनी पोया डखना साई नाम बोल की मना कोई जान दो जिना भग मथाही नान कहा रंग मान दो शांत कहते पवित्र सुनते सावधान लिखती कुल तारिया जीव जिनको साधु संग नाम हर तिनी ब्रह्म बिचारिया जीव ब्राह्म विचारिया जन सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी घर कर गैली ने हर जसोदी ने जो ना तावे न मरी सतगुर दयाल कृपाल भेड़ तारे काम करो लो मारिया कस न जाए कस स्वामी सतगे जाए नानक मारिया श्री राग मल चौथा बनजारा एक ओंकार सतनाम करो प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जन श्रिया सा कोई जीवा जी सवे प्रतिपाल दा कर करम यसो एसो हर सदा त्याय ते हुनर न कोय जो मोह माया चित लाए दे से छोड़ दे तो करो जन नानक नाम ते आया हंसकाई हुई मैं हर बिना न कोई अरस गुरु सुनाई पाई बन जा या तरा प्राग प्राप्त हो राव नित सन जना बिन भाई आर के ना ना हो जो मैं करूं माव दे जो बेसा पुत्र ना हो पिता जात ना हुई गुरु तुठा करे प्रसाओ बड़ भागी गुरु पाया रहे

कृष्ण सूची अंदले पूर्व लिखे कमाए पूरी भग सतगुर मिले सुदाता नाम बसे मन आए सुख माने सुख मरना सुखे सुख पे आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख बिहाय नानक सो नाम मनो नव सारिये जित दर सचे सुभा पाए महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुणदास गुरमती आ पछाणिया राम नाम प्रगास सचो सतकमावना बढ़ियाई वडे पा जियो पिंड साहब ते सिका सिफत करे अदास सचे शब्द सलाहणा सुखे सुख निवास जब तो संज मने माहे बिन नाम त्रिग जीवास गुरमती नाम पाई मनुख मोहि बनास ज्यों पावे तू राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास सब तू दे पासो मंग दे नित कर अरदास जह तू दे सब कुछ मिले एक ना दूर है पास तुद बादो थाओ को नाही जिस पासो मंगी है मन वेखो को निर्जा सब तू दे सलाह दे दर गुरमुखानो प्रकाश लोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा माया मोह प्यार अंतर ब्रह्म न चीनी मन मुरग वा दूजे पाए जगत प्रभु दान।

का फिर फिर जन्म व्यास कस्तूरी कह पोलड़े हे गंदे डुम पई आस पौड़ी तू ऐसा नाम त्याई मन मेरे जो सबना उपर हुक्म चलाए तू ऐसा नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर ले छाए तू ऐसा नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सा भुख गवाए तू गुरमुख नाम जपिया बनभागी तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए नानक नाम राज सबना ते बड़ा सब नावे अगे आने वाए श्लोक महला तीजा बेश करे करूप कुलखनी मन खोटे कूड़ियार फिर कह पाने ना चले हुक्म करे गवार गुर कह पाने जो चले सब दुख निवारणार लिखिया मेट न सकिए जो तो लिखिया करतार मंत्र सौंपे कंत गो सबदे तरे प्यार बिन नामे किन ना पाया देखो दे बीचार नानक साहब सवालियों सुलखणी जेरा भी सजनार महला तीजा माया मुगवार है देहदा ना दिसे और वार ना पार मन ज्ञानी महा दुख पाए दे डूबे हर नाम बसार बल्कि उठ कर्म कमावे हे दूजे पाए प्यार सतगुरु सेवे अपना पौधल उतरे पान नान गुरमुख सत समावे हे सच नाम अरदार पौड़ी हर जल तरमे जल भरपूर दूजा नाही कोई अरा बह करे न्याओ कुड़िया हर सा मार कढोए सुचारा दे बड़ियाई हर धर्म न्याओ की ओए सब हर की करो उसत जिन गरीब नाथ राख ली ओए जय कार की ओ धर्मिया का पापी को डंड दी ओए श्लोक महला तीजा मनमुख मैली कावणी कुलखणी कुनार फिर जोड़िया करे अपना पर पुरख है नाल प्यार।

पौड़ी कीता लोड़िए काम सोहर पै आखी है कार्ज दे सुवार सतगुर सा साखी है संता संतान अमृत चाखी है पै पंजन मेहरबान दास की राखी है नानक हर गुण गाय अलख प्रभ लाखी है। श्लोक महला तीजा ज्यो पिंड सब ते सदा सब से दे उधार नानक गुरमुख सेविय सदा सदा तार हो वधारी तिन को जिन ते आया हर निरंकार उन्हां के मुखो सद उजले उन्हां नूं सब जगत करे नमस्कार। महला तीजा सतगुर मिले उल्टी पई नवनिंद कर च्यो खाओ अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिर निज घर बसे निथाई अनहा धुनी सत बजदे उन मन हर लिव लाई नानक हर भगतां तिना कै मन बसे नानक हर भगत तिना कै मन बसे जिन मस्तक लिखिया तुर पाए पौड़ी हो ढाडी हर प्रभ खसम का हर के दर आया हर अंदर सुनी पुकार ढाडी मुख लाया हर पुछिया ढाडी।

हर गुण पढ़िए, हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा ने सुनिए, मृषा संगतार गुण गाये, जग पाव जल दुतर तरिय जियो, आओ सखी हर मेल करेहा, मेरे प्रीतम का मैं देव स्नेहा, मेरा मित्र सखा सु प्रीतम भाई मन दसे हर नर हरिये जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, और रहे न सका बिना बखाने, मैं औखद मंत्र दीजे गुर पूरे, मैं हर हर नाम धरिय जियो, हम चातरक दीन सतगुर सरनाई, हर नाम बोध मुख पाई, हर जल ने धाम जल के मीने, जन नानक जल मिल मरिया जियो, माज महला चौथा, हर जन संत मिलो मेरे पाई, मेरा हर पर दसो मैं भुख लगाई, मेरी सरदा पूजक जी बंदा ते, मिल हर दर्शन मन पी जय जियो, मिल सत्संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरी मन पाणी, हर हर अमृत हर मन भावे, मिल सतगुर अमृत पी जय जियो, मिल सतगुरु अमृत पी जाए जियो, भागी संगत पाव ही भागी भ्रम चुकटा खाव है, बिन सुभागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल भरी जय जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारी, हर नाम दया मन तारी, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पी जय जियो, माज महला चौथा, हर गुरु ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग रता हर प्याया, हर नाम खर हर बोली, मन हर रस तुल तुल पौदा जियो, आवो संत मैं गल मलाइए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है, हर के संत मलवा देवा जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, मठ भागी हर संत मलायो, गुरपुरे हर रस मुख पाया,

जाने हर गुण गुरमुख गावा पाणी परम पवेवा जूनी सब किते रजाई जियो नक मूर्ख ना को सियाणा वरगे सब बाते सब के तेरा भाणा कम कुछ रुपया तथा तेरी कीमत कह न जाई जियो खाक संतन की दियो प्यारे आए प्यार तेरे द्वारे दर्शन भेख मन गावे नानक मरण सो भाई जियो माज महला पंजवा दुख तदे जब सिर जावे भुख भी आपे बहुते आवे भुख भी आपे बहवे तावे सिमत नाम साहब रे लाजेस देवे दीन दयाला जियो सतगुर मेरा वर समर्था जी संभाली तां सब दुख लाथा चिंता रोग पीड़ा आप करे पाला जियो बारक मांगी हो सब कुछ मंगा देंदे टोट नाई प्रभ रंगा तैयारी पै पै बहुत मनाई दीन दयाल गोपाला जियो मुगल हारी सतगुर पूरे जिन बंधन काटे सगले मेरे हृदय नाम ते निर्मल किए नानक रंग रसाला जियो माज महला पंजवा लाल गोपाल दयाल रंगीले गैर गंभीर बेअंत गोबिंदे उच था बेअंत स्वामी सिमर सिमर जीवा जियो दुख भंजन दान बोली निरपुर वैर तह तुली अकाल मूर्त योनि शंभो मन सिमर ठंडा तीवा जियो सदा संगी रंग पाला उच करे पाला नाम छान मंत्र प्राण गुरमुखा मृत पीवा जियो दुख सुख प्यारे तो त्याई इस मत गुरु ते पाई नानकी धर तू ऐठा करा रंग पार परिवा जियो

तुम पुरख बधाते तुम सदा सदा सुधाते सब को तुम ही ते बरसाव अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्शन तेरे पवन प्रीता तुम गढ़ बिखम तना जीता तुम दाते तुम पुरख बधाते तो दो देवड़ा वरना सूरा जियो रेन संतन की मेरे मुख लागी दुर्मत वैसी कबुद भागी सच कर वैस रही गुण गाई नानक में से कूरा जियो माज महला पंजवा बिसर नाही ये प्रदाती कर कृपा भक्त संगराती दिन सैन जियो तो त्याई उदान मोहे करना जियो माटी अंधी सो समाई सब कह दिया भरिया जाई अंध बहु चो तमाशे तुझ भाणे सो होना जियो जहदा दिता सब कुछ लैना शक्ति अमृत भोजन खाना सिर सकाली शीतल पवना सहज कीर्तन करना जी।

सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो, अपने ठाकुर जो पहराया, बहुत न लिखा पुछ बलाया, ते सेवक नान कुरबाणी सो गहर गंभीरा गौर जियो। माझ महला पंजवा, सब किस कर मैं वार नाही, वाह टोले सो परम पुलाही, गुरु प्रसादी अंतर पाया सो अंतर वार सुहेला जियो, किम चिम बरसे अमृत तारा मन पीबे, सुन शब्द विचारा अंत बोध करे दिन राती, सदा सदा केला जियो, जन जन का पिछड़िया मिलिया साध कृपा दे सुकारिया, सुमत पाए नाम ते आए गुरमुख होए मेला जियो, जल तराग ज्यों जले समाया, त्यों ज्योति संजोत मिलाया, को नानक भ्रम कटे एक बड़ा भो न हुए जोला जियो। माझ महला पंजवा, जिस कुरबाणी जिन तू सुनिया, तब लारी जिन रसना फणिया, बार बार जे तिस विटो जो मन तन तो धरा दे जियो, चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाली, नैन निहाली तेरे पुरख दियाली, मन दे मत से अपने साजन जिन गुरमिल सो प्रबला दे जियो, सेवट पागी जिन तो मैं जाने, सबके मदे लिप्त निर्वाणे, साधक संगुन भवत तरिया, सब दूत साह दे जियो, जिनकी शरण पया परिया मन मेरा, मान तन तज मोह अंधेरा, नाम तन दीजे नानक तिस प्रभ यगम गा दे जियो। माझ महला पंजवा, तू पेट साख तेरी भूली, तू सुखम हुआ सतूली, तू जल ने तू फेन बुध बदा, तुद बिन अवर ना पालिए जियो, तू सूत मणिए पी तू है, तू गांठी मेर सिर तू है, आत्मा दियां ते प्रभ तू प्रभ सोई, आत्मा दे अंत प्रभ सोई, अवर न कोई दिखा लिए जियो, तू निर्गुण सर्वन सुदाता, तू निर्वाण रसिया रंगराता, अपने कर्तव्य आपे जाने, आपे तो संभालिए जियो, तू ठाकर सेवक फुन आपी, तू गुप्त प्रकट प्रभ आपी, नानक दास दा गुण गावे एक भोरी, नजर निहालिए जियो। माझ महला पंजवा, सफल सो बाणी जितना बखाणी, गुरप्रसाद किने पहले जानी, तन सो वेला जित हर गावत सुनना, आए ते परवाना जियो, हे नेत्र प्रमाण जिनी दर्शन पेखा, से कर भले जिनी हर जस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, ओ बल तिन तह संग पछाणा जियो, सुन साजन मेरे मीत प्यारी, सास सुन खिन माए उधारी, गिरफ काठुआ मन निबल मिट गया अवन जाना जियो, दुए कर जोड़ एक बिनो करी जय, कर कृपा लुभदा पत्थर ली जय, नानक प्रभ भय कृपाला, प्रभ नानक मन भाणा जियो। माझ महला पंजवा, अमृत बाणी हरा तेरी, सुन सुन हो गए परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनवा, सतगुर का दर्शन पाए जियो, दुख पया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम बखाना, जल थल नीर भरे सर सुभर, पिसा कोई न जाए जियो, दया तारी तन सृजन हारे, जीजन सगले पित पारे, मेहरबान कृपाल दयाला सगले, त्रिवत हाये जियो, वन तरन तर पवन की तुम हरिया, कन हर खन भीतर करिया, गुरमुख नानक तिसे राधे, मन की आस पुजाए जियो। माझ महला पंजवा, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता, तू मेरा रखा जमनी थाई ता।

सुनो जीवा सुख तुम्हारी तुम प्री तुम ठाकर तुम्हारी तुमरे का तुम ही जानो तुम्हारी ओट गोपाला जियो गुण गावत मन हरिया हो वह कथा सुन तुमल सलीफ हो वह पेट संग साध संतन के सदा जपो दे आला जियो प्रभ अपना साथ साथ समारो ये मत गुर प्रसाद मंत हारो तुमरी कृपा ते हुई प्रगा सा शरम प्रतपाला जियो साथ साथ साथ प्रभ सोई सदा सदा सद आपे हुई चल तुम्हारे प्रट प्यारे देख नानक पहने आला जियो माज मर लंजो हुक्म वर्षण लागे मिया साजन संत मन नाम ने बेया शीतल शांत सहज सुख पाया ठांड पाई प्रभ आपे जियो सब कुछ बहुत बहुत पाया कर कृपा तो सर आया दात करो मेरे दतारा जी जन सब त्रापे जियो सच्चा साहब सच्ची नाई गुर प्रसाद ते सदा ते आई जन मन काटे मोहा बिन से सोग संतापे जियो सास सास नानक सलाई सिमत नाम काटे सफाहे पूर्ण हस करी खिन भीतर हर हर पूर्ण हस करी खिन भीतर हर हर हर गुण जापे जियो माज महला पंजवा आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गा भी गुण अगम पारे गाव सो सवे मुक्ते सो त्याइए जनाम किए जियो जन्म जन्म के किल विख जावे हे मन चिंदे सगली फल पावे हे सिमर साहब सो सत स्वामी रिख साहब को दिए जियो नाम जाप सर सुख पाइए सब पवन सुर रचाइए जन से व्या सो पार ग्रामी कार सगले थिए जियो आए पया तेरी शरनाई जो पावे तो लह मलाए कर कृपा प्रा भक्ति लावो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजवा भय कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वर्षे सबनी थाए